0: Monsieur Desmond Doyle, pourriez-vous demander au Sherpa Chumbi de nous imiter le cri du Yeti?
1: साबले चाइन्स जो तिमी यतिको आवाजले अलि गर्न सक्छ कि सक्दैन गर्न सक्छ ल गरौँ
2: क्वाक क्वाक क्वाक क्वाक क्वाक

0: चा ने किया है
1: टाइम्स एफएम ये
2: राधे श्याम
0: अरे राधा ये किस फिल्म का गाना है
2: ये गाना नहीं है भाभी ये एक दुकान का नाम है जहाँ रंग बिरंगी हैदराबादी नेचुरल फ्रेश वाटर पर्ल्स की प्रदर्शनी लगी हुई है
0: तुम मुझे वहाँ ले चलोगी
2: क्यों नहीं जरूर और आपके लिए 10-25% की छूट भी है
3: Teens Today, the magazine for teenagers from India Today.